याति और आज इनन की किसी आज याति आउट देयर ई आज दी फोन प्रेजेंट जिंदगी ही इला दी सरप्राइज विजिट दी बीच ई आज याति दैट इज क्लोजर डे ई आज यो दी गो दी सेट नी सी पोस्ट अलिया द कार दी सोशल मीडिया आर दी सी इ संगी सी दी टेन दी एविडेंस ई दी बी ए आज दी प्रेजेंसी ई आज दी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स किसी आज अलियादी कांटेक्ट ये व्यक्ति ये दिन ही ये आज दी ये अन्य को ये आज मार्दी साथी रिलिजियस ये आज दी ये दी एडहर्स किसी आज अस्तो ये आज दी साथी तो दे अटलंगे ये मेंटेन दे ये लाई आज दी एक्सटेंस किसी दी इन्ना ये बकारी नान सा प्लेनेट्स के ये आज अति दी अंडरमाइन ये दी पीगो दी फेथ के इन्ना को ये आज ये दी कॉम्प्लिकेट ये दी एश्योरेंस के ये आज ह्यूमंस के ये दी यूनिक कंडीशंस ला दी अर्थ दे ला दी ये दी ऑपोजिट किसी आज बिलीफ दी बी दी यूएफओस किसी दी ये आज दी रियल वंस के आज ये दी बेस्ट ये आज थिंग एगो आर ये आज दी तहत इन्हीं के दी बच्चे दी रिलिजन दी ऐसी